0: जोजोलपाथ नेपाल सम्भ चिन्चा सवपी खुद बछला गा पञ्चमी थो रेडियो नेपालका नेना दिस जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। संवैधानिक परिषदीय बैठक ठाउँ चोनिगु गोसादु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदीय कार्यालय सिंहदरबारे ठाउँ सनिलैयाता इले चोनिगु संवैधानिक परिषद बैठक प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नीति राष्ट्रपति नापा सिफारिस यातेङ्गुदु खाली चुया चोङ्गु प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया न्योज्याके त संवैधानिक परिषद नापा संवैधानिक परिषदीय नाय नापा जुया सोनादीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय उजंस परिषदीय बैठक चोनेता सनागु संवैधानिक परिषद या सचिवालय धागु ख थो बैठके बुती कायता सभामुख डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय सभाया नाय नारायण प्रसाद दहाल कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतम प्रतिनिधि सभाया विपक्षी दलया नेता भीष्मराज आङदाम्बे व उपसभामुख रुबी कुमारी याता बनातयागु सचिवालय धागुदु। बागमती प्रदेश सरकार थौ सोकगु प्रदेश भाषा दिवस थिथि ज्याचो याना हनासुङ्गुदु तामाङ्गो नेपाल भाषा या त प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश भाषा या मान्यता ल लागुदु बागमती प्रदेश सरकार विक्रम सम्बत 2081 निसे वैशाख 24 गति या दि प्रदेश भाषा दिवस हनेता उलेज्या यागु खसा बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय या सचिव दिपेन्द्र सुवेदी थोक नयाँ जानकारी बियादिगु ख भाषा दिवस या लसता थौ सुथे खोपे र्याली नापा यागु पर्यटन कार्यालय या यहाँ प्रमुख पवन कुमार पोखरेला जानकारी बियादिगुदु बागमती प्रदेश सरकार थौ प्रदेश न्याङ्क सार्वजनिक विधा नापा बिगुदु। संविधान संशोधन या नीति बहस पत्र देखे त निसोङ्गु कार्य दल पूर्व महान्यायाधी वक्ता व कानून लागा विज्ञप्ति नापा सलव्यकगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय जुगु सहलहस पूर्व न्यायाधी वक्ता व कानून लागा या विज्ञप्ति शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली संघीय संरचना न्यायपालिका पुनः संरचना संवैधानिक निकाय लिया व समावेशिता नापाया विशेष थगु सुज न्यवयादी गुख सहलस पूर्व महान्यायाधी वक्ता डाक्टर युवराज संग्रौला स्थानीय तह या गैर दलीय देखेगु प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित जुईको व्यवस्था या मागु कनादिगु दुसा पूर्व महान्यायाधी वक्ता सविता भण्डारी विज्ञप्ति नापा सांसद पिन्ता मन्त्री देखे दैगु व्यवस्था बालनाइगु विदेशे दुपी नेपामी पिन्ता मतदान यायगु अधिकार बी मागु प्रदेश लिया म यायगु व मन्त्रालय दोहोरो पञ्चीका स्वया मागु व न्याय परिषद व संसदीय सुनवाई या संरचना पुनर्विचार याय मागु विचार पङ्का दिगु दुसा पूर्व महान्यायाधी वक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख या व्यवस्था जुई मागु सांसद मन्त्री जुई मजुगु व संवैधानिक इजालस या औचित्य दति पुनर्विचार याय मागु विचार पङ्का दिगु दुसा पूर्व महान्यायाधी वक्ता महादेव प्रसाद यादव संवैधानिक आयोग या लिया पुनरावलोकन याय त सुझाव बिया दिगु दु पूर्व न्यायाधी वक्ता मुक्तिनारायण प्रधान न्यायपालिका पुनः संरचना व उच्च अदालत या त अझ बल्ला के त प्रदेश ल्या म यागु पलेसा प्रदेश संरचना या त अझ सेला कि मागु विचार पङ्का दिगुदु पूर्व कानून मन्त्री तथा पूर्व महान्यायाधी वक्ता अग्नि प्रसाद खरेल स्थानीय तह या त अझ ढिसी लाके मागु व समावेशिता या त संविधान या मूल निधंसा कथा कया मध्यक न्याज्याके त सुझाव बियादिगुदु सहलस संविधान सभा सदस्य सुरेश आले मगर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पक्ष विचार पङ्का दिगु दुसा प्रतिनिधि सभा सदस्य परशुराम तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मधेसी मुस्लिम व आदिवासी समुदाय न्यास संविधान संशोधनीय बहसे कगामागु विचार पङ्का दिगुदु कानून सचिव राजीव गौतम न्यायाधीश कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा प्रदेश प्रमुख या भूमिका या त अझ धुवाथुइका व लिचो लाके मागु विचार पङ्का दिगु दुसा सल लिपा प्रधानमन्त्री या राजनीतिक सल्लाहकार नापा कार्यदल या संयोजक असीम शाह वोगु सुझ बहस पत्र देखे गुनीति महत्व जाइगु विचार पङ्का दिगु दु सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाय सांसद व स्वपुतैपी मन्त्रालय मन्त्री पिन्दथि वैगु बजेट विनियोजन व ज्याचो विशेषण सल झुगुदु रासोपाय संसदीय दल कार्यालय सिंह दरबारे हिग सलय झोले भौतिक योजना मन्त्रालय व अर्थ मन्त्रालय विनियोजन याय मागु बजेट र थुकिया प्राथमिकता विशेषण स्वापु दुपी सांसद पिसा मन्त्री पिना पासल व्याका दिगु ख वैगु बजेट विनियोजन यानी सांसद पिसा मन्त्रालय जुई मागु अवस्था मवैमा धैगु अर्थ मन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले व भौतिक योजना मन्त्री सुनिल लम्साल नापा रासोपा सांसद पिन्दथि सल हजुको रासोपा सांसद राजीव खत्री जानकारी ब्यादिल सांसद खत्री थगु लागास बजेट विनियोजन याय मन्त्रालय जुई मागु अवस्था मध्येमा व अथे मजुमा धैगु नीति मन्त्री पिनापा सांसद पिसा सामूहिक कथा सहल व्याकागो कनादिल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा संविधान निर्माण या इले तयार तगु आशय अख सरकार संवैधानिक परिषद नापा या अध्यादेश हगुलि काङ्ग्रेस उकिया विपक्षीय दने गुधया दिगुदु पार्टी सांसद पिसाम हिक संसदीय दल या कार्यालय सिंह दरबारे प्रशिक्षण बिया पिहा भनेको छुले सभापति थापा सरकार अध्यादेश हे फैगु जुसान संविधान या लुखा हाचङ गाय मजिगु धया दिल सभापति थापा संवैधानिक निकायले दुगु प्रधानमन्त्री या नियन्त्रण मजुमा धका संवैधानिक परिषद या व्यवस्था यानागु जु साना सरकार थ अनुकूल या मनोतेता नियुक्ति बिगुए नीति अध्यादेश हगु धका कुङखिना दिल सभापति थापा भूमिहीन सुकुम्बासी तेगु व्यवस्थापन या झोले राज्य कोटेले मजिगु विचापङ्का दिगु दुस वैगु संसद बैठके पार्टी या भूमिका विशेषण जानकारी बिता मिग संघीय संसद या निगु सदन या थमा सांसद पिन्ता प्रशिक्षण बियागु नेपाली कङ्ग्रेस धागुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद कार्यालय पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी छेलिगु छेला चोङगु सवारी जोलन्तेगु थाथिया धल लल हेता गृह मन्त्रालय या त उजौँ बिगुदु प्रधानमन्त्री कार्यालय सँग यागु लिपाङगु अध्ययन छु पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी पिसा कानुन तोके यागु सिपे उप सवारी जोलन छेला चोङगु व ब्याग्लम ब्याग्लम निकाय सन् दोहोरो सुविधा कया चोङगु टटेल विके धुङका गृह मन्त्रालय नापाम हिक धल फोङगु ख पूर्व राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व सभामुख पूर्व राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पिसा कयाचुङ्गु सुविधा या पूर्ण थल मिघे छेता ताकेता यानागु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या प्रेस अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल जानकारी बियादिल गृह मन्त्रालयसँग वैगु थलया लिधसा मापदण्ड शिवे उप सुविधा कयाचुङ्गु सवारी जोल लित बिता व सुविधा नापाया प्रक्रिया त अझ व्यवस्थित यायगु सरकार या तयारी दु सरकार निजामती सेवा व स्वास्थ्य सेवा या राष्ट्रिय स्तरीय झिन्नीगु ट्रेड युनियन या दर्ता खारेज जना बिगुदु श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग मेघ नेपाल निजामती सेवा एन 2074 कथा च्यागु नेपाल स्वास्थ्य सेवा एन 2053 कथा पेङ्गु ट्रेड युनियन या दर्ता खारेज जना बिगु ख निजामती कथा या नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल व स्वतन्त्र राष्ट्र सेवा कर्मचारी संगठन नेपाल दर्ता याना तगुली त खारेज याना बिगुदु अध्ययन स्वास्थ्य सेवा कथा दुगु नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन न दर्ता खारेज यानागु विभागीय प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जानकारी बियादिगु ख आयागु सरकार छु नेपाल एन या त संशोधन या त देखगु अध्यादेश 2083 कथ सार्वजनिक सेवा खे दुगु ट्रेड युनियन ना पाया व्यवस्था चिके धुङका ट्रेड युनियन या दर्ता खारे जुवङ्गु ख जनमत पार्टी मधेस प्रदेश सरकार या त बिगु समर्थन लित कागुदु प्रदेश प्रमुख या कार्यालय हिग विज्ञप्ति पिथासे नेपाल या संविधान कथा निसोङगु वर्तमान सरकार या त बियागु समर्थन जनमत पार्टी लित कयागु धागु ख जनमत पार्टी या संसदीय दल या नेता चन्दन कुमार सिंह नापा प्रदेश सभा या दुज पिसा लाची तगु नेपाली कङ्ग्रेस या संसदीय दल या नेता कृष्ण प्रसाद यादव या नेतृत्व देकगु सरकार या त ललहागु समर्थन लित कयागु औपचार तारिक पाउ प्रदेश प्रमुखिया कार्यालय स मिग दर्ता याद धुङका प्रदेश प्रमुखिया कार्यालय मिग प्रेस विज्ञप्ति पिथ से थोख या जानकारी बिगु ख स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी निशा मेहता नापा नेपाल नीति बेलायती राजदूत रोप फेन नाप्ला नदी गुदु मन्त्रालय मिग जुगु नाप्ला ज्या मेहता ओ निगु दे दथुया मन्त्रालय मिगजुगु नाप्ला ज्या मन्त्री मेहता निगु दे दथुया स्वापु थथया कालबिल निगु दे दथुया ता बालाकेगु बेस महत्व जागु भाला मितिगु नेथना दिसे वैगु दिने बेलायत नापाया साझेदारी अन्ज बानलाई गु व जनमुखी जुइगु फलसा पङ्का दिगुदु कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति आन्तरिक बैठक कार्यविधि अध्ययन आयोगु नितिन हेमधुजे उपसमिति निसुनिगु कोचिगुदु समितिया मिगजुङ्गु बैठक संयोजक नापा हेमधुज चुनिगु याना उपसमिति निसुनेगु कोचिगु ख उपसमिति स दलीय लिदंसा रासोपायासोमा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समसमा याना समिति देखेको सभापति अशोक कुमार चौधरी जानकारी बियादिल सरकार वरिष्ठ चिकित्सक नापा चिकित्सा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार नियुक्ति यागुदु मन्त्री परिषद बैठकमा डाक्टर अग्रवाल यता अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार नियुक्ति यागु कोचिनागु प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञप्ति पाँच दहालना जानकारी बिहा दिगु ख त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा स्वास्थ्य अध्ययन संस्था आइओएम या पूर्व डिन नापा चुयाचुनादीमा डाक्टर अग्रवाल देय स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती र चिकित्सा शिक्षा भिङ्केको नीति प्रधानमन्त्री या त मागु सल बिहा दिगु जुगु दुसा डाक्टर अग्रवाल र राज्यसँग छुन पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा मकासे विशेषज्ञ कथा थगु सेवा लल ह्यागु प्रेस व अनुसन्धान यता दहाल जानकारी बिहादिगु ख महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादी बाल अधिकार नापाया संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सिआरसी कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्ड प्रतिवेदन देखिएको प्रक्रिया त लिचो लागेको कथन हजिया के त मन्त्रालय प्रतिबद्ध जुयागु बचाउ पङ्कादिगुदु मन्त्रालय मिग ये गोसागु सिआरसी प्रतिवेदन प्रक्रिया विशेष अभिमुखीकरण ज्याजोले मन्त्री बादी बाल अधिकार संरक्षण प्रवर्धन ओ सिआरसी प्रतिवेदन प्रक्रिया त लिचो लाके त निहजाकेगु बचाउ पङ्का दिगु ख विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण नापाया मुद्दा थुन्या दुपी व्यवसाय दीपक भट्ट ओ सुलभ अग्रवाल या त मेगु झिन्निनु हिरासत तया अनुसन्धान या त अनुमति ल लागुदु न्यायाधीश पी हेमन्त रावल दिल्ली रत्न श्रेष्ठ ओ विदिर कोइलराया मङ्का जलस मिग अनुसन्धान या त अनुमति ल लानागु विशेषज्ञ विशेष अदालत जानकारी बिगु ख ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ मौसम पूर्वानुमान खुसीबा पूर्वानुमान व जलवायु विश्लेषण थे जागु सेवा ते तब्या किगु याना ज्यायागु बचम पङ्का दिगुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या मिग स्थलगत अनुगमन या झोले वेक्ला विभाग या लिपाङको पूर्वानुमान प्रभावकारी जुगु अझ प्रभावकारी या यता ब बिएगु बचम पङ्का दिगुदु थोएल सता मन्त्री श्रेष्ठ यता विभाग या महानिर्देशक डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ विभाग या ज्यातेगु विशेषण जान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वैगु वाले चिनिया भ्रमण या तेङ्गु दु अन्तर्राष्ट्रिय मामिला त अंश सेना चुना उनासँग इले वैदेशिक सङ्कट योगको जुया चोङ्गु इले हलिया निगु महाशक्ति राष्ट्र पी दथि सहलह जुइ तेङ्गु ख अमेरिकी अधिकारी तेगु कथङ वैगु वाले अथेदैगु मे चौध पन्ध्रसम्म बेजिङ जुइगु ट्रम्प सी दथुया वार्ता इरान विशेष आपलन सहल जुइ तेङ्गु दु वङ्गु अक्टोबर जुगु व्यापार सम्झौता लिपा अमेरिका चीन दथि निगु देश स्थिर स्वाफु या त अंश ट्र्याके तसे प्रतिबद्धता यागुली थुकी जुगु प्रगति विशेषण ट्रम्प सिद्धि सल जुइ तेङ्गु ख आ मौसम या जानकारी थौ देया हिमालय पहाडी लाग्या भतिचा खिउसे जुइगु व तराई लाग्या न खिउसे जुइगु धागुदु लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश नापा ल्याउँदुगु प्रदेश हिमालय पहाडी लाग्या छु थासे मला नापा लाप्सा तोया भतिचा तसकौ वा वैगु व चपु कुहा वैगु धुकुमा यागुदु नापा थौ तराई या यको थासे मला नापा लाप्सा तोया वा वैगु जल मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपे घौस यसोनी गले यागु मापन कथा अधिकम तापक्रम नियागु निसे अधिकतम तापक्रम निङ्याको फुटी निगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु धुकुमा यागु दुसा थौ निने ये सोनिका क्वाज नि पेङ्गु निसे निखुगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु धुकुमा यागु दु थौ सोनि गले सुते स्याङ्या त इजुया झिङ्या गुमिनेटे लुइ कगु निभा सनि ल खुता इजुया पिन हे गुमिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निना दिसा शुभ
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ।
2: नागरिक लगानी कोष।
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
4: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार।

0: लसु प्रफुल्ल तिनी मञ्जुश्री सम्मत 2862 तालु दुगुलाला छेपाङी चुई सेकिक विक्रम सम्मत 2083 साल वैशाखलाला गी चुई सेब्ली नारे बिहिबार चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द डेनमुला ना सूर्य मोक्तान बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ तिनी सोमसा प्रदेश गई दिन्छन् लोलोलो गेखोर सङ्सिद्धाङ बमला बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ विक्रम सम्मत 2081 साल वैशाखलाला गी चुई सेब्ली कुनु हेन्से प्रदेश गई दिन्छन् दाङबारी ती बमोबा प्रदेश सरकारी गेला गैठिम 2080 अनुसार प्रदेश सरकार से 2081 साल हेन्से प्रदेश गइदिन्छन् दाङमारी ती बहिन्न थेठिम 2080 साल कार्तिकलाला घिचिसे सोमकुनु प्रदेशला राजपत्र रिछी बुमुबा प्रदेश सरकारी गेला गैठिम 2080 कार्यान्वयन लसै बागमती प्रदेश सरकार से तामाङथेन बाई गई द प्रदेशला सरकारी गेला गई लागु ताबा घोषणा बुमुबा चुनन गइदिन्छन् अवसरी बागमती प्रदेशला ग्रेनबर्ड इन्द्रबहादुर बानियासे आमा गई द सम्मान लामान आमा गैरी स्याहार पिनबारी थिएर आमा गई द लामा प्रयोग लबारी पिनबारी प्रदेश से बाङलाबान खापमुला विषय संक्षेपमा मुला ग्रेनब्रोड बानिया से प्रदेश सरकार से गैला ठिम अनुसार व्यवहार गेलाबन खापमुला विषय संक्षेपन बेनान गई द सोना लबारी लेना लबारी थिएन विकास लबारी खामदोबा याङ बेना लान जिम्मेवारी हिन्न विषय नन संक्षेपमा मुला युल्चोहो रामचन्द्र पौडेल से जिम्मेवार प्रेस से संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र द अझ कोङमा सोबारी खाम्सेला मलाई विशेष संक्षेप मला संचार थिएन सूचना प्रविधि प्लोनकाङ से तिनी पुरस्कार पिनमारी सङ्घ विशेष गेखोरीले मतान सिमान युल्चोहो पौडेल से नेपाल लग्लेठिम सामाजिक थिएन सांस्कृतिक रङमा बेरान पोगेदेरी नेपाली पत्रकारिता थुम्सेक्लाङमा भूमिका लामन ग्रेन मला विषय संक्षेप हेन्न युल्चोहो पौडेल से लोलोलो दुईरी सङ्घमा जनआन्दोलन थिएन सङ्घर्षला दुईरी नेपाली हिउलबदा सुशासन विकास प्रगति थिएन नोर समृद्धि लाभा अभियान द नेपाली प्रेस से लामन प्रभावकारी गेलाबारी खाम्ब मुबा बेसी डेन्सला सिप बोला संसार थिएन सूचना प्रविधि ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हासे सार्वजनिक गेन्दन गदे द ज्याब सवारी थिएन पुनर्संरचनालाबारी खाम्दोला विषय संक्षेप मला गोर्खापत्र प्रकाशन ला गार्जगे निचु से डु छ दिन्छन् लाभसरी तिनी सेङमा गेखोरेले मथान सिमान ब्लोन तिमल सिन्हासे पोबा दुई अनुसार सार्वजनिक गेन्दन गदे द सेङमारी सरकार से बाङ्लाबन खापमला विषय संक्षेपन संस्थान द ज्याब सवारी कर्मचारी गदे सेन स्यान जिम्मेवारी थिएन उत्तरदायितासी गेलाबारी खाम्दोला विषय संक्षेप हेन्न ब्लोन तिमल सिन्हासे दारेम समस्या चेकेन हुन्छ आङिन थे त छाङ्न लाबारी खाममा सोच थिएन व्यवहार ज्याब सुबारी खाम्दोला विषय नन् संक्षेप मला ब्रन्तिमल सिन्हा चाहिँ सार्वजनिक गेन्दुन गते त प्रभावकारी उत्तरदायी थिएन हिलबाला गेलाबारी खाममा सुबारी सूचना प्रविधिलाई विकास थिएन डिजिटल मिडियालाई प्रभावलाई छ्यामछ्यामै गोर्खापत्र संस्थान नन् पुनर्संरचना लाबारी खाम्दोला विषय संक्षेप मला ब्रन्तिमल सिन्हा चाहिँ गोर्खापत्र से सेङ्बा दोङराब रेङ्बा दोङराब सोसी जिम्मासे दुई अनुसार राङ्दा स्यानमा सञ्चार माध्यम बिमा लोलो थिएन प्रभावकारी खरङमासी सोबारी खाम्बा बिमा ताम्रे कोही ताम्लाबारी बाङ्ला दोला विषय संक्षेप बोला सुहाणुलासे ब्लोतिमल सिन्हासे नेपाल द लामन गोइसे समृद्ध सोबारी खाम्बा हिन्न विषय संक्षेपन बेनादन बेनान गोइ द सोनालाबारी प्रयोग लाबारी थिएन लेनालाबारी खाम्दोला विषय नन संक्षेप बोला चुनन ताङ्री तिनी हेन्से गोर्खापत्र से सन्थाल थिएन हायो गोइरी साङ्गुर छिबारी ती बमला चु गोइरी छिबा साङ्गुर द तिनी ब्लोन तिमल सिन्हासे ठङसेङला सुबा हिन्न गे रोजगार थिएन सामाजिक सुरक्षा ब्लोन रामजी यादव से फिर्का बिल्डी गे लाबारी निमा दुई लाबन खाबा ठगी थिएन श्रम शोषण द नियन्त्रण लाबारी सरकार से बाङ्लाबन खाबा मुला विशेष संक्षेप मुला उद्योग वाणिज्य गे थिएन उपभोक्ता हित समितिला सिंहदरबारी तिनीटिबा समिति चिसाङ्री लिङ्गमथान सिवान ब्लोन यादव से टाङ्गा चाबा थिएन ठगी लाबा एजेन्ट कादिदा दन्देला ठिम अनुसार उजुरी खासाइनन् कारबाही लाबारी खाम्बा ठिम दन्दे आरे बसे ठिम स्रोतला पुनर्संरचना थिएन संशोधन लाबारी खाम्दोला संक्षेप हेर्न ब्लोन यादव से फिर्का भिल्डी गे लाबा दुईरी श्रम शोषणले परप्तब नेपाली गे लाबा मिदा उद्धार लाबन बुबा तिन दारेम ग्यार्जङ इस्मीमा लामा स्थानीय तह ज्ञान श्रम स्वीकृति पिनमारी खाम्बा तयारी लाबन मुला बिसेनन् संक्षेप मुला चिसाङ्री सांसद गदे से निवेदन पिनमाला भरि फिर्का भिल्डी गे लाबन खाबा गदे द लुबा मुद्दा युमा निर्दोष मि गदे से कारबाही नादवन खादोबा से चुराङमा प्रक्रिया द युन बिमा युना काबारी खाम्दोला बिसे संक्षेप मुला संघीय सांसद लोनखाङ से तिनी हेन्से सांसद गदेला विद्युतीय हाजिर लाबारी बायोमेट्रिक विवरण रूपरी ती बोला संघीय संसदला छिसाङ गदेरी, सांसद गदे खाबाथे नाखाबा च्याबारी, विद्युतीय माध्यम गम हाजिरी अभिलेख थानबारी, सांसद गदेला बायोमेट्रिक विवरण रूपारी ती बहिन नबिसे संसद लोनखाङ से पाङ बम्बरा लोनखाङ से तिलमा गोर्खीको सूचना छिसी विद्युतीय हाजिरला बारी बायोमेट्रिक विवरण पिनमारी बेनन सांसद गदेता मैजनला बम्बा सूचना री बायोमेट्रिक विवरणला छ्याम्री सांसद गदेला फोटो खिचबला दोबासे सांसद गदेता औपचारिक गोइलोरी संघीय संसदला लोकवान सिखाबरिनन् मैजनला बम्बा संसदला चिसाङ दारेम सांसद गदे से कागजी हाजिर लबग्लारी डिजिटल माध्यम से हाजिर लादो छ लतापमला ग्रेन भाल्थेन दुई से काबा बिपी राजमार्ग सोमरेलिचा तिनी हिंसे देपेन ठाङ बम्बला अस्थायी डाइभर्सन सोसी थे ग्यामरी तिनी सियो हिंसे सवारी सङमारी वाङ बखिन्ना जुन प्रहरी गेदिम्से दान्देनुन नामताई सिटी बासे आभ्राना आताबा बिमा स्यान्दचु ग्याम से आभ्रबारी बेनादन मोइजेनला बम्बला निबा लानी रे सोमबार कुनु ग्रेन नामताई बलिचा रोसी सियोङरी ग्रेन भाल खा बलिचा ग्याम नोङनेला बम्बा ग्रेन नामताई बला पाइयानुन रोसी थुम्ला किलोमिटर ब्ली ग्याम्री शोभा अस्थायी डाइभर्सन द क्षेत्री तानाला बसे प्रहरी से सवारी साधन सेङमारी आपिन्ना ग्याम ढुङमान खाबुमा ग्याम नोङमा दुईरी सवारी साधन दा धुलिखेल काभ्रे भन्ज्याङ मङ्गलटारथेन सिन्धुलीला नेपाल थोक्री कासी थानमान खाबुमला निबदिङला भालथेन डुइसे राजमार्गला चौकीगाङ रोसीथेन सिन्धुलीला नेपाल थोक थुम्री चुइसे भ्रे किलोमिटर सडक ग्याम ब्योङनाला बसे स्योङरिन डाइभर्सन सोसी सवारी साधन गर्दै सेङमान खाबुमला रोङसाब्लुन शिशिर खनाल दा लो एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कला ग्रेन लोन्छेन मोहम्मद गुलाम सरवार से रुप्ता सिलेङमला शुभमला रुप्तामा लो एसियाली क्षेत्रीय संगठन सेलाबारी खाम्बा रोदा लेन लबा रे खाम्बा ताम्री काठुई लाबुबुबा विषय रोङसाब्लुन खाङसे पाङबामुला राष्ट्रिय तथ्याङ्क गेदिम्से बिरान छोङलाबन खापा प्रतिष्ठानका देदा छोङला रेकर्ड थानमा गेखोरी बोकिनमारी मोहिजेनला बम्बला नर्थुम्री छोङलाबन खापा औपचारिक थिएन अनौपचारिक थुम्ला रेकर्ड थान्दो बासे राष्ट्रिय तथ्याङ्क गेदिम नाङला नोरगणना शाखाला निर्देशक डाक्टर वेद प्रसाद ढकाल से गेखोरी बोकिनमारी मोहिजेनला शुभहिन्ना नोर गेखोर गदे सेङमारी थिएन नर्थुम्ला ठिम गदे शोभाला आधार सुबारी विषय चुनन वैशाखलाला नि कुनै हिन्से असारला निस्कुनुदोना गेखोर सेङमानमला उसम करेन्ट लागप्तासी थिएन राग्याम रिल्सी खोटाङ जोङरी तिरे रेन बेन्दुङी मिसिप बोला दिप्रुङ सुइचुम्मा गाउँपालिका ब्ली बतासे विभाग लाला ब्लिचुइसे सोमदिङला आनन्द राई करेन्ट लागप्तासी थिएन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका गिस महादेव स्थानला ब्लिचुइसे गाँदिङला सुनिल कार्की राग्याम रिल्सी शिवमोला विषय प्रहरी से पाङबाहिना चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लसेको लसो फ्राफुल्ला
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वेब पोर्टलमा radionepal.gov.np र radionepalonline.com का अतिरिक्त मिडियम वेबका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरू सहित एफएम ब्यान्डका 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा देशका विभिन्न स्थानबाट सुन्न सक्नुहुन्छ
2: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल सुन्न सकिने एफएम रिले प्रसारण केन्द्रहरू
1: कोशी प्रदेशमा
2: भेडेटार धनकुटा
1: आइतबारे इलाम
2: पत्ताले डाँडा सोलुखुम्बु
1: र सिलौटी डाँडा पाँच थर
2: मधेस प्रदेशमा
1: जितपुर बारा
2: र गौरी डाँडा महोत्तरी
1: बागमती प्रदेशमा
2: खुमलटार ललितपुर
1: सिम भन्ज्याङ मकवानपुर
2: र चरीकोट दोलखा
1: गण्डकी प्रदेशमा
2: दाउन्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व
1: दुर्लुङकोट पर्वत
2: पोखरा कास्की
1: जोमसोम मुस्ताङ
2: र बन्दीपुर तनहुँ
1: लुम्बिनी प्रदेशमा
2: सात दोबाटो रोल्पा
1: बगनास काली पाल्पा
2: रेसुङ्गा गुल्मी
1: अनि हेमन्तपुर र चौपट्टा दाङ
2: कर्णाली प्रदेशमा
1: सिमीकोट हुम्ला
2: खलङ्गा जुम्ला
1: मानमा कालीकोट
2: मुर्माटप मुगु
1: जुफाल डोल्पा
2: मुसीकोट जन्ती बस्ने लेक रुकुम पश्चिम
1: अनि हर्रे र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत
2: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
1: बुढीतोला कैलाली
2: खोडपे बैतडी
1: छापरी दार्चुला
2: हेमन्तबाडा बजाङ
1: उडीतोला डोटी
2: र काला जाग्रा पोरखेगढी बाजुरा
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल नेपालको समावेशी आवाज

ये रेडियो नेपाल है। मौलिम अंसारी से उर्दू में खबरें सुनिए। सदर ममलिकत रामचंद्र पौड़ेल ने कहा है कि एक ज़िम्मेदार प्रेस वफाकी अवामी जमहूरिया को मजीद मजबूत करेगा। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया है कि मुख्तलिफ अवकात में होने वाले अवामी इनकलाब और जद्दोजहद में नेपाली अवाम की तरफ से जाहिर की गई खुश हुक्मरान

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झा सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल एहि वर्ष के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान से विभिन्न व्यक्तित्व सबके पुरस्कृत एवं सम्मान प्रदान कयलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित एक समारोह के बीच राष्ट्रपति पौडेल एहि वर्ष के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर झा आ नम्रता शर्मा के 2,00,000 सहित सम्मान कयलनि। अहिना राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से पत्रकार सब उमे श्रेष्ठ भोला कुमार पासवान आ रूपा गहतराज के 2,00,000 के हिसाब से पुरस्कृत कयलनि। एहि कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल नेपाल के हरेक राजनीतिक परिवर्तन में पत्रकार के अहम भूमिका रहित आयल चर्च करैत एहि प्रकार के सम्मान से नया पुस्ता के पत्रकार के सत्य के बाट पर चलले प्रोत्साहन भेटत से बतौलन। राष्ट्रपति पौडेल निष्पक्ष पत्रकारिता सत्य तथ्य समाचार संप्रेषण करब पत्रकार के जिम्मेवारी है, पत्रकार के सुरक्षा प्रदान करब सरकार के प्रमुख दायित्व रहल बतौलन। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा वर्तमान सरकार स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में रहल चर्च करैत स्वतंत्र निष्पक्ष मर्यादित पत्रकारिता आजुक आवश्यकता रहल बतौलन। पत्रकार के न्यूनतम पारिश्रमिक आ वृत्ति विकासक लेल सरकार थप कदम उठाएत चर्च करैत संचार मंत्री तिलवल सिन्हा पत्रकारिता सूचना के संवाहक के मात्र नहि भ सामाजिक न्याय आ समृद्धि के उत्प्रेरक सेहो रहल बतौलन। ओ लोकतंत्र में आलोचना के स्थान सुरक्षित रहल चर्च करैत सरकार संचार संबंधित विभिन्न कानून सब तैयार कर रहल बतौलन। मंत्री तिमिल सिन्हा विश्वव्यापी सूचना प्रविधि के तीव्र विकास संगे संचार क्षेत्र में अवसर आ चुनौती सेहो थपायल गेल चर्च करैत छापा ऑनलाइन संचार माध्यम के व्यावसायिकता तथा टिकाऊ के लेल सरकार की प्राथमिकता रहल बतौलन। एहि अवसर पर नेपाल पत्रकार महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्य वर्तमान सरकार प्रति सबके अपेक्षा रहल बावजूदो सूचना के पहुँच में कमी आयल बतौलन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सूचना प्रविधि के तीव्र विकास और डिजिटल मीडिया के बढ़ित प्रभाव संगे संचार माध्यम नागरिक के आवाज और सामाजिक हित के केंद्र में राखि कर काज करबाक चाही बतौलन। गोरखा पत्र प्रकाशन के 126वें वर्ष परिवेशक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ओ संचार माध्यम प्रति नागरिक के अपेक्षा आ विश्वास के केंद्र में राखि कर काज करबाक चाही पर जोर दिलन। ओ सरकारी संस्थान सबके समयानुकूल ढंग से थप व्यवसायी के जिम्मेवार बनेबा लेल आवश्यक रहल चर्च करैत संस्थान के हित के लिए कर्मचारी के जिम्मेवार आ उत्तरदायित्व भ क काज करबाक लेल निर्देशन देलन। लंबा समय से अलझाल समस्या के मात्र देखा क नहि हाथ कहित ओ कर्मचारी सब में समाधानमुखी सोच आ कार्यशैली आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री तिमिल सिन्हा गोरखा पत्र के लंबा इतिहास स्मरण करैत समय संगे पत्रकारिता के शैली प्रविधि आ कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आयल बतौलन। गोरखा पत्र स्वयं के अन्य संचार माध्यम से कोना का अलग प्रभावकारी आ विश्वसनीय बनेबाक ए विषय पर गंभीर समीक्षा करबाक चाही अखन के ई आवश्यकता रहल बतौलन। संचार मंत्री तिमिल सिन्हा गोरखा पत्र द्वारा आय से प्रकाशन शुरू भेल संथाल आ हायु भाषा के समाचार पृष्ठ के प्रतिकृति सेहो अनावरण कयलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामजी यादव वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया में भ रहल आर्थिक ठगी आ श्रम शोषण नियंत्रण करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के सिंह दरबार में बैसल बैठक में मंत्री यादव आर्थिक ठगी करय वाला अनधिकृत एजेंट सबके अखन के ऐन हिसाबे उजूरी पश्चात कार्रवाई करबाक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं भेला से नीतिगत तह से कानूनी स्रोत के पूर्ण संरचना तथा संशोधन करबाक आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री यादव विदेश में श्रम शोषण में रहल नेपाली श्रमिक के उद्धार भ रहल अखन 700 से अधिक स्थानीय तह में श्रम स्वीकृति प्रदान करबाक व्यवस्था मिलेबाक प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक तैयारी भ रहल जानकारी दिलन। बैठक में सांसद सब निवेदन के भर में वैदेशिक रोजगार संबंधी झूठ मुद्दा में निर्दोष व्यक्ति सब पर कार्रवाई भ रहल आ प्रक्रिया के शीघ्र रोकबाक चाही पर जोर दिलन। एहि बैठक में सांसद सब श्रमिक सब के रोजगारमुखी तालीम आ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण डिजिटल साक्षरता वृद्धि आंतरिक रोजगारी सृजन करबाक लेल स्रोत सुनिश्चितता दीर्घ रोग भेल श्रमिक के स्वास्थ्य बीमा के व्यवस्था करबाक चाही लगायत समय समसामयिक विषय सब पर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री यादव के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के क्रम में मूल समझौता विपरीत ठेकेदार कंपनी के कर छूट दक भ्रष्टाचार के अभियोग में तत्कालीन मंत्री सचिव सब सहित 10 गोटे आ चीनिया निर्माण कंपनी विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में
आरोप पत्र दायर कल आयोग के हिसाबे विमानस्थल निर्माण के क्रम में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और चिनिया ठेकेदार कंपनी बीच भेल खरीद समझौता के प्रावधान उल्लंघन का आर्थिक अनियमितता के अनुसंधान से खुलल समझौता में ठेकेदार कंपनी कर महसूल तथा अन्य शुल्क सम तिरवाक चाही स्पष्ट व्यवस्था भेल बावजूदो बदनियत पूर्वक कर छूट देवा सन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट का राज्य के सार्वजनिक संपत्ति में हीना मीना के ने आयोग जनौलक नेपाल सरकार ऋण स्वरूप प्राप्त के ने सार्वजनिक संपत्ति मध्य से जम्मा 3,62,05,22,160 हीना मीना हानि नुकसानी या दुरुपयोग भेल पुष्टि भेलाक बाद आयोग आई मुद्दा दायर कलक। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय सब व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आर्थिक गणना में सहभागी होबा लेल आह्वान कलक। आर्थिक कारोबार होबय वाला औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय करय वाला संस्था के गणना प्रक्रिया में सहभागी होबा लेल राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय अंतर्गत आर्थिक गणना शाखा के निर्देशक डॉक्टर वेद प्रसाद ढकाल आग्रह कलन देश के आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत करवाक आर्थिक नीति निर्माण के आधार प्रदान करवाक उद्देश्य संग बैसाख 2 गते से अखाड़ 7 गते धरि गणना कार्य जारी है। ओ हुनक हिसाबे गणना के क्रम में व्यवसायिक कृषि खानी उत्पादन उद्योग व्यापार निजी व्यवसाय बैंक तथा सहकारी लगायत वित्तीय संस्था व्यापार संबंधी प्रतिष्ठान के तथ्यांक संकलन कायल गेल। व्यावसायिक रूप में दर्ता भेल लगभग 4,80,000 व्यापारिक संस्था अखन धरि ई आर्थिक गणना में समावेश भेल। बैसाख 22 गते धरि देशे भेल 32% आर्थिक गणना सम्पन्न भेल निर्देशक डॉक्टर ढकाल बतौलने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव अपन सचिवालय में 10 गोटे कर्मचारी नियुक्त कलाक बाद कर्मचारी सबके तलब भत्ता रोका ले। मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी संघीय सरकार प्रदेश सरकार के मंत्री तथा मुख्यमंत्री के सचिवालय में अधिक में 3 गोटे मात्र कर्मचारी राख के परिपत्र जारी कर चुकलाक बाद 10 गोटे के तलब निकासा करब जोखिमपूर्ण हेबाक अवस्था रहला से तलब रोकाल। मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्त कायल गेल व्यक्ति सब में प्रमुख स्वकीय सचिव संतु लाल यादव, स्वकीय अधिकृत में कमल देव यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर में महेश्वर चौधरी, ड्राइवर में दिवस दुलाल तथा कार्यालय सहयोगी में विद्यालाल राउत और संजीव कुमार यादव रहल। नेपाल सरकार के खर्च कटौती संबंधी परिपत्र संग ई नियुक्ति सब बाझल गेल कहत प्रशासनिक कर्मचारी सब तलब निकासा कर स्वीकार कलाक बाद तलब रोकाल। मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव पत्रकार सब संग बातचीत करत सचिवालय के कर्मचारी के लंबा समय से तलब रोकाल स्वीकार कलन। 70 प्रहरी फरार 4 गोटे प्रतिवादी के पकड़ के अदालत में बुझौलक। फैसला कार्यान्वयन के क्रम में ठगी आपराधिक उपद्रव आ मारपीट मुद्दा में अदालत से कै तथा जरिमाना सजाए सुनौलाक बाद फरार रहल 4 गोटे प्रतिवादी के पकड़ के अदालत में बुझौलक। जिला प्रहरी कार्यालय 70 से खटल गेल प्रहरी के टोली 70 जिला अदालत राजबिरा से सजा फैसला भेल 4 गोटे प्रतिवादी के पकड़ के बृहस्पति दिन अदालत में दाखिला कैल गेल। प्रहरी नाव परीक्षक डम्बर बहादुर पुरी अय के जानकारी देलने छ। अभिभावक संघ परसा जिला में रहल संपूर्ण विद्यालय में रवि दिन छुट्टी नहीं देवाक मांग करत जिला प्रशासन कार्यालय परसा बीरगंज महानगर पालिका में अलगे ज्ञापन पत्र बुझलक। संघ के सदाध्यक्ष संदीप शाह नेतृत्व के टोली आई प्रमुख जिलाधिकारी भोला दहाल और महानगर के शैक्षिक प्रशासन महाशाखा के प्रमुख आनंद लामी छाने के ज्ञापन पत्र बुझौलक। संघीय सरकार सरकारी कार्यालय संगे सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सब से हफ्ता के 2 दिन सही ना रवि दिन बंद कर लेल नया नियम लगौने। परसा के पटेरवा सुगौली गांव पालिका में महिला कृषक सब के कृषि क्षेत्र की आधुनिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि करवाक उद्देश्य के संग विभिन्न कृषि कार्यक्रम वितरण कायल गेल। पटेरवा सुगौली गांव पालिका वार्ड नंबर 5 अंतर्गत निचूटा वाड़ा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नवदुर्गा कृषि महिला समूह के आवश्यक कृषि उपकरण तथा सामग्री रूपांतरण हस्तांतरण कायल गेल। कार्यक्रम में वाड़ा अध्यक्ष विपिन मुखिया गांव पालिका के मुख्य आधार कृषि भेला से क्षेत्र में लगानी और प्रोत्साहन के प्राथमिकता में राखल गेल बतौलन। देश के सबसे अधिक समान तथा समान आवय वाला बीरगंज भंसार कार्यालय के जांच पास प्रक्रिया फिर से संचालन में आयल। भंसार बिंदु में आवय वाला समान में अनिवार्य अधिकतम खुदरा मूल्य MRP कार्यान्वयन कैला पर लगभग एक हफ्ता से रुकायल गेल भंसार जांच पास प्रक्रिया। आयातकर्ता समान के अधिकतम खुदरा मूल्य स्वयं घोषणा करवा का गोदाम में पहुँचलाक बाद MRP तोकबा कबूलियत कर संगे फिर से संचालन में आयल। बीरगंज भंसार कार्यालय के सूचना अधिकारी उदय सिंह बिष्ट भंसार में आयातकर्ता MRP घोषणा करवा का गोदाम में सामान पहुँचलाक बाद MRP लगाकर मात्र बाजार में पठेबा
कबूल केलाक बाद मात्र बुध दिनसँग जाँच पास प्रक्रिया आगू बढल बतौलने छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल भर्तीवास सुनि रहल मैथिली भाषामा समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संवैधानिक परिषद की बैठक ने सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए की डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व अर्थमंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्के सहित 14 लोगों के विरुद्ध 3,62,00,00,000 रुपए से अधिक के दावे के साथ केस हुआ दायर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। तथ्यगत समाचार संप्रेषण पत्रकार का दायित्व है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। और ईरान युद्ध अब जल्द ही समाप्त होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। अब समाचार विस्तार से। संवैधानिक परिषद की बैठक ने सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज प्रधानमंत्री एवं संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष वरेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश डॉक्टर शर्मा की प्रधान न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश की। बैठक में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम, प्रतिनिधि सभा में विपक्षी दल के नेता भीष्मराज आंगे दुम्बे और उपसभामुख रूवी कुमारी सहभागी थे। परिषद की सिफारिश के बाद डॉक्टर शर्मा के नाम को संसदीय सुनवाई समिति से अनुमोदित कराना कानूनी व्यवस्था के तहत आवश्यक है। यदि संसदीय सुनवाई समिति शर्मा के नाम की पुष्टि करती है तो वे नेपाल के 33वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। इससे पहले न्याय परिषद ने भावी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के लिए 6 न्यायाधीशों के नाम संवैधानिक परिषद को भेजे थे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप में तत्कालीन अर्थमंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की सहित 14 लोगों के विरुद्ध 3,62,00,00,000 रुपए से अधिक का दावा और वसूलने की मांग करते हुए मामला दर्ज किया है। आयोग के सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी ने जानकारी दी कि विमानस्थल निर्माण के दौरान मूल समझौते के प्रावधानों के विपरीत ठेकेदार कंपनी को कर छूट देकर आर्थिक अनियमितता करने के आरोप में आज विशेष अदालत में मामला दायर किया गया। आयोग ने तत्कालीन अर्थमंत्री कार्की सहित तत्कालीन अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्योपाने, तत्कालीन सह सचिव सुरेश आचार्य और दुंडू राज खिमरे तथा पूर्व सचिव तत्कालीन सह सचिव केवल भंडारी के विरुद्ध 3,62,05,22,000 रुपए की बीगो यानी हानि राशि की मांग करते हुए मामला दायर किया है। इसी प्रकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तत्कालीन महानिदेशक संजीव गौतम और निवर्तमान महानिदेशक प्रदीप अधिकारी, उप सचिव युवराज पांडे, शाखा अधिकृत उर्मिला भंडारी तथा इंजीनियर योगेश अर्याल के विरुद्ध भी समान राशि की मांग करते हुए मामला दर्ज किया गया है। आयोग ने चीनी कंपनी CAMC, उसके अध्यक्ष, परियोजना प्रबंधक और कंपनी प्रबंधक के विरुद्ध भी मामला दायर किया है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने इस वर्ष के राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मान से विभिन्न व्यक्तित्वों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया है। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आज आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पोडेल ने इस वर्ष के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर झा और नम्रता शर्मा को 2,00,000 रुपये नकद सहित सम्मानित किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से पत्रकार उमेश श्रेष्ठ, भोला कुमार पासवान और रूपा गहतराज को 2,00,000 रुपये की राशि सहित पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि नेपाल के हर राजनीतिक परिवर्तन में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस प्रकार के सम्मान नई पीढ़ी के पत्रकारों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य तथ्यों पर आधारित समाचार प्रसारण करना पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जबकि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि सरकार स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और मर्यादित पत्रकारिता आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समृद्धि की प्रेरक शक्ति भी है। इस अवसर पर नेपाल पत्रकार महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्य ने कहा कि वर्तमान सरकार से सभी को अपेक्षाएं हैं लेकिन सूचना तक पहुंच में कमी आई है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस एवं गोरखा पत्र प्रकाशन के 126वें वर्ष प्रवेश के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में संचार मंत्री डॉ. तिमिल सिन्हा ने कहा कि सूचना प्रविधि के तीव्र विकास और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ संचार माध्यमों को नागरिकों की आवाज और सामाजिक हित को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ पत्रकारिता की शैली, तकनीक और कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है, इसलिए गोरखा पत्र संस्थान की पुनः संरचना अपरिहार्य हो गई है। मौके पर मंत्री तिमिल सिन्हा ने गोरखा पत्र द्वारा आज से प्रकाशित संथाल और हायू भाषा के समाचार पृष्ठ की प्रतिकृति का भी अनावरण किया। प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति की बैठक में सदस्यों ने लिपु लेख के संबंध में भारत और चीन सरकार को नेपाल सरकार की ओर से हाल ही में भेजे गए कूटनीतिक नोट को सकारात्मक कदम बताया है। समिति की आज हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि भारत और चीन दोनों पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखते हुए अतिक्रमित नेपाली भूमि वापस लाने के लिए प्रभावी कूटनीतिक पहल आवश्यक है। सदस्यों ने नेपाल की भूमि वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय संयंत्र गठन कर प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास करने के साथ ही व्यापार, पारवहन और सीमा प्रबंधन को व्यवस्थित करने पर जोर दिया। बैठक में समिति की सभापति सुमनिमा उदास ने समिति के कार्यक्षेत्र और आगामी कार्यदिशा के बारे में जानकारी दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबुजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबुजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् बाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री रामजी यादव ने कहा है कि वैदेशिक रोजगार से होने वाली ठगी को नियंत्रित करने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रतिनिधि सभा की उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की आज की बैठक में मंत्री यादव ने बताया कि मंत्री बनने के बाद 25 दिनों के भीतर वैदेशिक रोजगार विभाग में दर्ज 40,000 मामलों में से 13,000 मामलों को डिजिटाइज करने की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक सभी स्थानीय तहों में श्रम स्वीकृति देने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। मंत्री यादव ने बताया कि वैदेशिक रोजगार से जुड़े मामलों में हेलो सरकार और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मंत्रालय ने 25 दिनों के भीतर 178 लोगों का उद्धार किया है। बैठक में समिति के सभापति रहबर अंसारी ने कहा कि वैदेशिक रोजगार से जुड़ी समस्याओं को तुरंत समाप्त करना संभव नहीं है, इसलिए इसके सुधार के लिए कानूनी सुधार पर जोर देना आवश्यक है। बैठक में सांसदों ने वैदेशिक रोजगार को व्यवस्थित बनाने, देश में ही श्रमिकों के लिए सम्मानजनक रोजगार का वातावरण तैयार करने और श्रमिक व उद्यमियों के बीच संतुलन कायम करने हेतु नीतिगत योजनाएं लाने के सुझाव दिए। वैदेशिक रोजगार के नाम पर आकर्षक वेतन का लालच देकर विभिन्न देशों में भेजने का झांसा देकर बड़ी रकम ठगने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुनसरी के 32 वर्षीय राजकुमार तामांग पर जापान भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से 11,55,000 रुपए ठगने का आरोप है। दांग के 31 वर्षीय प्रकाश केसी पर अमेरिका भेजने के नाम पर 12 लोगों से 93,00,000 रुपए ठगने का आरोप है। काबरे के 33 वर्षीय दिल्लीमान तामांग की 2 लोगों से 14,75,000 रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। इसी प्रकार पांचथर के 47 वर्षीय श्रीहांग को दक्षिण कोरिया भेजने के नाम पर एक व्यक्ति से 12,25,000 रुपए और स्यांगजा के 28 वर्षीय नमूना भंडारी को मकाऊ भेजने के नाम पर 3 पीड़ितों से 5.5 लाख रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवार ने आज उनके कार्यकक्ष में शिष्टाचार भेंट की। मौके पर दोनों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के विषय पर चर्चा हुई, ऐसा परराष्ट्र मंत्रालय ने बताया। इसी प्रकार परराष्ट्र मंत्री खनाल से दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक संजय विजयशेखर ने भी शिष्टाचार भेंटवार्ता की। मंत्रालय में हुई मुलाकात में बाल कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल, साफ सफाई एवं नेपाल और यूनिसेफ के बीच जारी सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। धादिंग के चारंगे फेदी को केंद्र बिंदु बनाकर आज सुबह 11:14 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया, ऐसा खान तथा भूगर्भ विभाग ने जानकारी दी है। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर लोक विजय अधिकारी ने बताया कि भूकंप के झटके धादिंग सहित आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही समाप्त होगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से AIR ने बताया कि एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला यह मसौदा 30 दिनों की बातचीत का रास्ता खोल सकता है ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया लेकिन चेतावनी भी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाकर हमले की पुष्टि की है। युद्ध विराम के बाद लेबनान की राजधानी में यह पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संवैधानिक परिषद की बैठक ने सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश पद के लिए की डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा की सिफारिश। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व अर्थमंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की सहित 14 लोगों के विरुद्ध 3.62 अरब रुपए से अधिक के दावे के साथ केस हुआ दायर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। तथ्यगत समाचार संप्रेषण पत्रकार का दायित्व है, राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टल का कथन और ईरान युद्ध अब जल्द ही समाप्त होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
6: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
7: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
8: *14#15# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
9: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
10: नागरिक लगानी कोष।
11: झण्डु आयुर्वेद।
12: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ।
11: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
12: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
11: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
12: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
13: यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ।
9: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ। दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौं।
10: नागरिक लगानी कोष।
13: नेपाल सरकार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुरोध। यही 2083 वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म देशैभर राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालन हुँदैछ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सङ्घ संस्थामा आउने गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सत्य तथ्य विवरण उपलब्ध गराई गणनालाई सफल गर्न सम्बन्धित सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध छ। आर्थिक गणनामा सहभागी भए सरकारलाई सही विवरण दिनु प्रत्येक प्रतिष्ठान व्यवसायको कर्तव्य हो। तपाईँले उपलब्ध गराएको पूर्ण र सही विवरणले नै देशको आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्दछ। तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार तपाईँका व्यक्तिगत तथा संस्थागत विवरणहरू पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछन्। यो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सबै मिलेर सफल पारौँ। अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय।
14: आफन्तसँगको भेट त सधैँ हुन्छ,
15: तर मीडिया मार्फतको भेटको मजा नै अर्कै।
14: के तपाईँ आफ्ना आफन्तहरूलाई केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो आवाज मार्फत? यदि चाहनुहुन्छ भने मेल गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम फ्यान बक्समा।
15: प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 1:20 करिब 2 सुन्न सक्नुहुन्छ अनिता आचार्यको साथमा कार्यक्रम फ्यान बक्स।
14: कार्यक्रम फ्यान बक्स।

आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में। और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र, और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह हमारे प्रिय प्राविधिक मित्र पुष्परत्न मजराचार्य जी। दोस्तों, मीडियम में 576, 648, 684, 795, 810 और 1143 किलोहर्ज के साथ साथ एफएम बैंड 98, 100 और 103 मेगाहर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np, साथ ही www.psbnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, और इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। तो जो नहीं देख रहे हैं और वो भी देखना चाहते हैं, वो अगर तो हमारे मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक पेज मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो करें, ताकि कार्यक्रम शुरू होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लाइव कार्यक्रम के वीडियो के साथ जुड़ पाएं और अपने मन की बात लाइव कमेंट के जरिए साझा कर पाएं। और आप यदि किसी कारणवश लाइव न भी देख पाएं, तो बाद में भी इसे मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि बहुत से नए मित्र रेडियो नेपाल के साथ जुड़ें और मधुरिमा के इस बड़े परिवार का हिस्सा बने। हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार और मिठास भरे फोन कॉल्स की। तो कार्यक्रम में लाइव बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 01421 और 01411736। और अगर नेपाल से बाहर के श्रोता हों, तो उन्हें डायल करना होगा +9774211721 और 4211736। तो दोस्तों, कार्यक्रम में फोन के जरिए जुड़ने और अपनी सुमधुर कविता, गजल और शेर व शायरी अपने दोस्तों के साथ साथ तमाम श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए डायल करें 01411721 और 01411736 और इस कार्यक्रम को बनाएं और भी मजेदार। और अब हम कार्यक्रम की सांगीतिक शुरुआत करने जा रहे हैं इस सुमधुर गाने से, जिसकी फरमाइश हिना झाजी ने बाफल से की है, काठमांडू से। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: और ये गाना आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया से, जो कि सन 1989 में रिलीज हुई थी लता मंगेशकर की आवाज में। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राम लक्ष्मण। और इसी बीच कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुमेह में, कौन बोल रहे हैं कहाँ से? हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं कहाँ से? और इनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही, पता नहीं प्रावधिक त्रुटि है, कुछ तकनीकी समस्या है। और एक कमेंट आया है लाइव में श्याम सुंदर माहेश्वरी जी का, मैं वो पढ़ता हूँ। फारबिसगंज बिहार से हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। सच्चे और शुभचिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं। वे चमकते तो सदैव ही रहते हैं, परंतु दिखाई तभी देते हैं जब अंधकार छा जाता है। क्या बात है, ऊंचाई को छूने के लिए पंखों की जरूरत केवल परिंदों को ही पड़ती है। मानव तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचता है। क्या बात है, भले ही प्रेम के विरोध में सारा संसार है, लेकिन प्रेम का भूखा भी सारा संसार है। बाकी टूटता है तो बहुत चुभता है, फिर चाहे वो कांच हो, ख्वाब हो, रिश्ता हो, चाहे दिल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर माहेश्वरी जी इतनी खूबसूरत पंक्तियां भेजने के लिए। और इसी बीच कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुमेह में, कौन बोल रहे हैं कहाँ से?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है, कौन बोल रहे हैं कहाँ से?
1: नोर प्रासी, हम डॉक्टर राय बोल रहे हैं।
0: डॉक्टर राय जी कैसे हैं?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। आप लोग कैसे हैं सर?
0: जी बहुत अच्छे हैं। क्या पेश कर रहे हैं कार्यक्रम में?
1: एक छोटा सा गाना सुना दे रहे हैं।
0: जी सुनाए इरशाद।
1: हर दिल में

0: था सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो, सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो, तरह तरह के खेल है रस्ता, हर दिल में रब बसता, हर दिल में रब बसता।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया सर जी। कौन सा गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
0: एक गाना है वही सर, पास में आओगी हाँ हाँ, आइसक्रीम खाओगी हाँ हाँ।
1: पास में किस फिल्म का है बता सकते हैं?
0: हिम्मत वाला जैसा लग रहा है सर, जितेंद्र और श्रीदेवी का है जैसा लग रहा है।
1: अच्छा अच्छा, पास में आओगे आइसक्रीम खाओगे। चलिए
0: जी, जी सर।
1: अच्छा आप श्योर नहीं है, पर हम ढूंढेंगे और इस गाने को जरूर सुनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए।
0: नमस्कार। नमस्कार सर।
1: नमस्कार। और ये थे डॉक्टर रायजी नवल परासी से, और अक्सर ये गाना ही सुनाया करते हैं, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि आप शायरी, कविता, गज़ल कुछ भी सुना सकते हैं, और बेहतर है कि आप शायरी वगैरह कुछ प्रेरक प्रसंग वगैरह कुछ भी सुनाएं, क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम मधुरिमा का इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जो सिर्फ प्रस्तुता द्वारा प्रस्तुति नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो श्रोता होते हैं उन्हें भी हम प्रस्तुता ही मानते हैं, और वे भी हमारे प्रस्तुता ही होते हैं, और हम मिलकर चलाते हैं। भले ही यहाँ पे स्टूडियो में आज मैं अकेला हूँ, हालांकि हम दो लोग होते हैं, और अकेले हों तब भी हमारे तमाम श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं और हमारे साथ वो प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो आप भी खूबसूरत कविताएं, गजल या जोक्स भी आप सुना सकते हैं फोन पर। तो हम फिर से गाने की ओर चलना चाहेंगे, और देखिए डॉक्टर राय की, डॉक्टर राय जी की उम्र काफ़ी लंबी है, उन्होंने अभी भी फ़ोन किया, और उन्हीं की फरमाइश जो है पिछले फ़ोन वाली श्रृंखला की, वो अब मैं हम सुनाने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। फिल्म कर्मा से जो किसान 1986 में रिलीज हुई थी, आइए सुनते हैं ये गीत।
2: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
3: तो क्या कहा आपने?
2: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे

0: दिलीप कुमार, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में एक गीत आपने सुना, फिल्म कर्मा से, जो कि सन 1986 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, 9800 और 103 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो नेपाल से अभी आप सुन रहे हैं हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम मधुरिमा, और कार्यक्रम के ऑफिशियल पेज मधुरिमा हिंदी के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। तो आप सबसे एक बार फिर से निवेदन है कि मधुरिमा हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी यही सलाह दें। और फिर से कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके बगल में रेडियो बज रहा है तो उसे बंद कर दें। उसको बंद कर दीजिए जी। बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? ओम बहादुर बिष्ट चुलाचुली से,
1: चुलाचुली वन से, ओम बहादुर मिश्र
0: जी, चुलाचुली इलाम, राइट?
1: वन से
0: जी। और कैसे हैं ओम बहादुर जी?
1: ओम से, ओम एच एम ओम बहादुर मिश्र
0: जी। क्या पेश करेंगे कार्यक्रम को, कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
1: यारा से बोलना चाह रहे
0: हैं। यारा ओ यारा,
1: जीत फिल्म से ना?
0: जीत फिल्म से। एक बार पहले भी आपने इस गाने की फरमाइश की थी और फिर से सुनना चाहते हैं?
1: फिर दो बार सुनना चाहते ना मैं। अच्छा से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी। आपकी आवाज थोड़ी सी कमजोर आ रही है, कुछ बीमार हैं आप?
1: नहीं से, नींद से
0: अच्छा, अभी नींद से उठे हैं तो इसलिए आवाज ऐसी आ रही है। चलिए, इस गाने को हम जरूर सुनवाएंगे। और कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में, अपनी ओर से कुछ प्रस्तुति देना चाहेंगे?
1: और कौन से अभी थोड़ा थोड़ा आएगा ना, ज्यादा नहीं आएगा, कुछ कभी से नहीं आएगा ना।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, इस गाने को हम जरूर सुनाएंगे, यारा ओ यारा, है ना?
1: दूसरा आदमी से, जो आदमी से सुनना चाहे मैं जरूर सुनना चाह रहा।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए ओम बहादुर बिष्ट जी। और ये थे ओम बहादुर बिष्ट जी चुलाचुली इलाम से। और फिर से हम गाने की ओर चलना चाहेंगे। रुपेश कुमार महतो जी हैं लहान सिरा से, और उन्होंने पिछली फोन वाली श्रृंखला में इस गाने की फरमाइश की थी। तो बिना देरी किए सुनते हैं ये गीत।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में एक गीत आपने सुना, फिल्म दोस्ताना से, जो कि सन 1980 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसी बीच कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि जी। राम पुकार राम जी?
1: राम पुकार राय यादव जी।
0: राम पुकार राय, माफ करें, मैं राम निकल गया मुझे, राम पुकार राय यादव जी, कैसे हैं?
1: जी ठीक है।
0: और दीपही रोथड़ का क्या हाल खबर है?
1: जी बहुत बढ़िया है, बड़ा बढ़िया मौसम भी है और अच्छे सब लोग बहुत अच्छे से हैं।
0: अच्छा, वहाँ पे बारिश कितनी हुई इस बीच में?
1: बहुत धीरे धीरे हुआ, बहुत कम हुआ, पांचों के रोज।
0: अच्छा, उतनी ज्यादा इस बीच में काठमांडू में तो काफी ज्यादा बारिश हुई, उधर कम बारिश हुई? नहीं
1: जी, इधर नहीं, पानी नहीं है इधर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप तो किसान भी हैं वहाँ के, जानते हैं कृषि के बारे में काफी कुछ जानते हैं, तो अभी बारिश होना अच्छा है या नहीं है उधर तराई के?
1: अच्छा है, वर्षा होना तो अच्छा है, वातावरण भी साफ रहेगा और खेती गृहस्थी के लिए भी फायदा है।
0: अच्छा, वो धान के जो बीज बोए जाएंगे उसमें काम आएगा?
1: जी काम आएगा, जेठ महीना में जी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे राम पुकार जी?
1: हम तो आप ही को तो छोड़ दिए भक्ति संगीत।
0: अच्छा,
1: अपने तरफ से,
0: अपनी तरफ से भक्ति संगीत कोई भी सुना दे
1: जी।
0: क्या बात है, और सेहत कैसी है आपकी?
1: अच्छे हैं, आप भी कृपा से बहुत अच्छे हैं।
0: चलिए पशुपतनाथ आपके सेहत को और अच्छा करें, और हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। और ये थे राम पुकार राय जी दीपही रोथड़ से, और काफी बुजुर्ग हैं और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। काफी लोग हैं, राम कृपाल ठाकुर जी हैं, वो भी काफी बुजुर्ग हैं और बड़ा प्यार देते हैं इस कार्यक्रम को, मैं उन्हें भी याद करना चाहूंगा। इसी तरह बहुत सारे हैं जो फेसबुक पेज के जरिए भी हमें देखते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमारे साथ प्रतिक्रिया देते हैं। पवन कुमार पंकज जी हैं, महेश्वरी सर हैं, श्याम सुंदर महेश्वरी जी हैं फारबिसगंज बिहार से, तो बहुत सारे नाम हैं। सुशील कुमार यादव जी हैं यूपी से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी महीने के हिसाब से पहले और तीसरे गुरुवार को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपके फोन कॉल्स।

0: जी, और फिर से हम गाने की ओर चलना चाहेंगे। राम दुलार ठाकुर जी हैं जनकपुर धाम से, और इस गाने की फरमाइश इन्होंने की है, तो इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा संगीत।
1: इजाजत है
2: इरशाद।

0: आपने सुना जो कि सन 1980 में रिलीज हुई थी मोहम्मद रफी और उषा तिमोती की आवाजों में। इसके गीतकार है कलवंत जानी और संगीतकार राज कमल। और इसी बीच कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: हम वीरेंद्र प्रसाद सिंह बोल रहे हैं, बरदंगा मोरंग से।
0: वीरेंद्र प्रसाद सिंह बरदंगा मोरंग से, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं सर?
0: जी हम भी मजे में हैं। और क्या पेश कर रहे हैं आज कार्यक्रम में?
1: घर तो बरदंगा मोरंग में, फिलहाल हम धरान में ही रहते हैं, हर रोज कार्यक्रम सुनते हैं, यहीं से बात करते हैं।
0: धरान से? हाँ, आपने पिछली बार बताया था। जी
1: धरान घोपा के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर से बोल रहे हैं।
0: जी जी जी, चलिए कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में।
1: क्या करेंगे, आपसे बातचीत हुआ, वो मैम सब आज नहीं है, वो क्या बोलता है, रमिता मैम भाई, और क्या बोलता है, सीमा शर्मा बहनी नहीं है आज?
0: दोनों आज छोड़कर चली गई हैं, मैं अकेला हूँ, अकेले छोड़कर चली गई।
1: नहीं शायद में बैठा होगा कहीं।
0: नहीं नहीं नहीं, दोनों ही छुट्टियां मना रही हैं और हम अकेले, पर कोई बात नहीं, आप लोग साथ में हैं हमारे।
1: चलो ठीक है, उन दोनों का बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इसीलिए।
0: चलिए आज मेरी ही बातों से काम चलाइए, क्या कर सकते हैं।
1: चलो ठीक है, एक तो गीत सुना दीजिए।
0: जी कौन सा?
1: वो प्यार झुकता नहीं फिल्म का।
0: कौन सा?
1: वो तुमसे मिलकर ना जाने की और कुछ याद आता है, वही फिल्म।
0: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों?
1: हाँ वो गीत नहीं है, एक मिथुन होता है।
0: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, ये ना,
1: और भी कुछ याद आता है, नहीं है वो गाना?
0: बिल्कुल है और जरूर सुनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया।
0: और ये थे वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी बरदंगा मोरंग से। और अब हम गाने की ओर चलना चाहेंगे। हमारे पास मेरे ख्याल से एक ही गीत सुनाने का समय है, लेकिन हमारे प्राविधिक मित्र इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हम दो सुना सकते हैं, तो फिलहाल हम इस गाने को रखना चाहेंगे। नील कुमार थारू जी ने इस गाने की फरमाइश की थी नवलपुर नवलपरासी से, तो उनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

ये गीत आपने सुना, इसमें आवाज़, गीत और संगीत नितेश ठाकुर जी का है। ये एल्बम का गीत है और हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, लेकिन एक गीत हम जरूर सुनेंगे हमारी ओर से, मधुरिमा की ओर से, और इसमें आवाज़ है फहीम अब्दुल्ला जी का। इसके गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार AR रहमान। तेरे इश्क में फिल्म से ये गीत है और हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। और इस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता, गज़ल, जोक्स आदि जरूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंह दरबार, काठमांडू, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। हमारा ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और इसी गाने को रखते हुए आज की मधुरिमा श्रृंखला से प्रावधिक मित्र पुष्परत्न मधुराचार्य जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहे रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।